0: तिसको भूत पर आपत स्वामी
1: अपने कृपा जिसे आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस विश्व गुरु का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: जो सो सतगुरु जिस हृदय

0: जाने ते सदा सुख होए।
1: आप मिलाए ले प्रभु सोए।
0: हो तनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस निजे भगवंत।
0: तन तन तन जन आया
1: जिस पर सब जगत तराया।

ने गावण तुदनू खंड मंडल ब्रह बंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनू गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले

परिया शैल पत्थर में जंते उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सात संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उड़े उड़ आवे सै कुसा, तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान,

अंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्या मैं तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी, से मुक्त पए जन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी।

मैं शाड कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है, आप हाथ दें मुझे उभरिया है,

गुड़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भैव, आप अपनी बुद है जेती,

रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहि पूपा अंडज जेरज से तज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दिन्नी कहूं फूल राजा हवे बिठा कहूं सिमट पयो संक्र इकठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख उबार आ सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब कल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल कृपा दृष्टन जाहे न रहो ताके ताप तनक मै हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शवाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत मैं शर्म तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोखते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता केलविक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता श्री अस्तु जप पहे दयाल्ला पूर्ण करा ग्रंथ तकाल्ला मन बांचत फल पावे सोई दुखनाथ से व्यापद कोई अड़ल सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निघनत नर के राह जो याकी एक बार चौपाई को कहा चौपाई संबत सतरा सहस पुणित जाय अर्ध सहसपुन तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भुवसा बाधे चार सौ पांच चरित्र समापतम सात शबम सातभजू दोहरा दा जानकर दास पर की जाय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार चापई मैं ना ग्रशय प्रथम मनाऊ किशन मिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तनसाओ लिवलागी मोरी पग इनसाओ

विचार अबना जान मुझे प्रत परिया चौन चौन शत्रु हमारे मरिया देख देख जग में दौ चल्ला राखा मैं और ना दला तुम मम करो सदा व्रत पार तुम साहेब मैं दास तिहार जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करह मोहे हार पुरा म्यान द्वार तोहे अपना जान करो व्रत पारा तुम साहेब मैं

संक्षेपते सबहूं कहत सुनाए। कबे बाज दोहरा ठाठ भयो मैं जोर कर बजन गहा सिर न्याए। पंत चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान काऊ

चौपाई जोए कथा सुने अर गावे दुख पाप से निकट न आवे मिशन भगत की ये फल होई आद ब्याद शब सके न कोई समत सत्रह सहस पचावन हाड वधि प्रथम सुख दावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल भरी लो लियो सुधारा नेत्र तुमके दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सदर्भ तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सेमृत शास्त्र भेद स्वाय बहु भेद गए अमेक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो।

विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उच्चड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरै भाग महला पहला कुदरत दिशा है कुदरत सुनिया कुदरत भाव सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण गतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी वै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी ने भोग भोगै होए भसमड़ भौर सिधाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया अगे करनी कीर्त वाची है बै लेखा कर समझाया

तीन हिस्सों से वंडिया गया। वड्डे साहिबजादे दोनों सतगुरु जी के नाल ने, छोटे साहिबजादे दादी मां जी के नाल ने, ते सतगुरां दे महल ओ भाई मनी सिंह जी दे नाल दिल्ली नूं जा रहे ने। अज परिवार विछोड़ा हो गया, विछड़ गया, बड़ा सोहना परिवार अज विछड़ गया। सरसा नदी च जो पार करते ने उस वेले बड़ा जान माल का नुकसान होया। उस सरसा ने बड़ा माल रोड़िया ते बहुत सारे सिंघां नूं रोड़ के लै गए। चमकौर साहिब पहुंच के वड्डे साहिबजादे शहादत का जाम पी जाते ने, पर साध संगत जी दुनिया च इहो जी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया भर च होर कोई इहो जी मिसाल नहीं मिलती कि जिसने पुत्रां दी शहादत ते जकारा छड्डिया होवे। जदों चमकौर दी गड़ी च दो जत्थे निकलदे ने, पंज पंज सिंघां दा जत्था सतगुरु जी बना रहे ने, ते आप ममती ते चढ़ के देखदे ने मेरे सिंह किन्ने दलेरी नाल लड़दे ने, क्योंकि बाहर जालमा दी फौज बहुत वड्डी है। सिंह उस कच्ची गड़ी दा, चमकौर दी गड़ी दा दरवाजा खोलदे ने, ते बड़ी तेजी नाल, बड़ी फुर्ती नाल, बड़ी दलेरी नाल लड़दे ने, जालमा दे दूर तक आगू ला देंदे ने। जदों दो जत्थे शहीद हो गए, बाबा अजीत सिंह जी सतगुरु जी दे कोल आए, आके हथ जोड़े, सतगुरु सच्चे पातशाह गुरदेव पिता जी मैं भी जंग विच जूझांगा, 19 साल उम्र है, चढ़दी हुई जवानी है, शस्त्र विद्या दे धनी ने, बड़े फुर्ती बड़े दलेरी नाल लड़दे ने। ते सतगुरु जी नूं हाथ जोड़े, सतगुरु जी मैनू हुक्म करो, मैं भी जंग विच जूझा, समा आ गया। गुरदेव पिता जी इजाजत दे देंदे, ते बाबा अजीत सिंह जी उस वेले कहंदे, सतगुरु जी तुसी मेरी बहादुरी ते कोई भी जरा भी शंका ना करो, मेरी दलेरी ते कोई भी तुसी शंका ना करो, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता अगर गया तो जीता ना आऊंगा। सतगुरु जी मेरा नाम तुसी अजीत सिंह रखिया, मैं किसे तो जीतिया नहीं जावांगा। भाव की सी, मैं जीउंदे जी किसे तो जीतिया नहीं जावांगा, मैं जीउंदे जी किसे तो हारना नहीं, जीउंदे जी मैनू कोई हरा नहीं सकदा। पर जेकर वो समा बनिया तो मैं जीउंदा वापस नहीं आवांगा, शहादत दा जाम पी जावांगा, पर मैं जीउंदा वापस नहीं आवांगा। गुरदेव पिता जी ने इजाजत दिती, सतगुरु जी ममती ते चढ़े आप देखण वास्ते, मेरा वड्डा साहिबजादा किन्ने दलेरी नाल लड़ेगा। पंज सिंघां दा जत्था बाहर निकलिया, बाबा अजीत सिंह बड़े दलेरी नाल लड़दे ने, लड़दे लड़दे जदों जालमां दे आहू लाउंदे ने ते जालम कहंदे, कहण लगे, सारे मिलके घेरा पाओ, एक साथ हमला बोलो, ये जिहड़ा इन्नी दलेरी नाल लड़ रहा है ये गुरु गोबिंद सिंह दा ये वड्डा पुत्तर है, उहदा राज दुलारा है, सारे मिलके हल्ला बोलो, नहीं तो इन्हें बहुत वड्डा नुकसान कर देना है। जालमा ने मिलके हल्ला बोलिया, चौहां पास्यों एक साथ वार किते। इतिहासकार लिखते ने, कहन लगे 300 तो ज्यादा फट बाबा अजीत सिंह जी दे शरीर ते सन। ते जदों बाबा अजीत सिंह जी धरती दे डिगे
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओहकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच। वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर सीम दे गुरु पार उतारन हार। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru.

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

दीन दर दुख भंजना कटकट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाही मन उहा नाम तेरा संग सहाय। जय महाभयान दूत जम दला तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुना चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंदना परै हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिखना बुझावै

मन रंग नानक पाइया साध कह संग जे मार के गने जाहे ना कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जे पैडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंहानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा भयान तप्त बहुकाम तै हर के नाम की तुम पर शाम जहा त्रिखा मंत्र जो आकर खै तै नानक हर अमृत बरखै।

श्री कर्म करे भव आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तापी हम मैला जावे हर के नाम समसर कशनाहे नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै

सा संगे हो मैं छोर है। जे को जन्म मरण ते डरा साध जना की सरणी पर जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सबू गनिये सबते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम दिन घट घट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल सिरठ साजना सुख दुख।

अंतर जामी अपनी गत में जानू आपे आपन संगा प्रभराते तुमरी उस तुम ते हुए नान कबर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस दर्शन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कट बसै हर नाम सलोक निर्गुण यार यान्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते शीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने कमल मूल ते कमल दृष्टाने जिंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अगर मैं जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पया ऊपर साग सैन मुख पियाओ बैठ गौ दैन एह निर्गुण गुण कछु ना बुझै बख्श लियाओ तौ नानक सीजै जे प्रसाद धारो पर सुख बस

कबड़ी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचाए, जो छड़ना स्वस्त्र कर माने जो हो मन सो दूर पराना, छोड़ जाए जिसका श्रम करे संग सहाय तस पर हराय, चंदन लेप उतारे तो हे घर द प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतत बिकराल नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल, करतूत

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कान में खोट गवावे एक पीना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा काहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सदनमस्कारा।

ठीक होवे बहुन सुखा विश्वास न होवे। जिसकी बस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथा उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत। बिरकी छाया सुरंग लाव्यो बिन स्यो मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै ने ताकू हाथ न आवे। कहे मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक बलै लाई। मिथ्या तन धन गुटम सबाया मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राह जो मन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता। मिथ्या त्रो मो अभिमान मिथ्या आप सुपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की सरन नानक जब जब जीवै हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्यास पर दर्भ को हिरह। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार गोतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तरनि पर बुकारा मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल दे।

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे जय प्रसाद सुगंधत तल नामे तिसको सिमृत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यामन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग तब्र लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सो विजय मन आठ पहर ताका जस गावि जाय जय प्रसाद तु सब कौ मान मुख ताको जस रसन बखान जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर के मान पावे नानक पत सेती कर जावे।

में सहाय, साधक संग बसे थान ऊंचाय, साधु कै संग महल पहुंचाय, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै गुरबान, साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार, साधु कै संग सो तन पावे, जिस तनते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे

राष्ट्रपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कबका विचारे कई कोट लवतन नाम ध्यावे नान करते गांत ना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपा न कठोर।

जोग शकीनो सपने रंग सपते दूर सबहू का संग बुझा देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरना बिंसे आवे ना जाए नानक सदी रहया समाए आप उपदेशा समझया बापे रजया सब कै साध आप किनो अपन विस्तार सब का शुसगाव करने हार उसते भिन्न कहो।

मोख संगा दुखी सदा अपवेत संगा दुखी किसा का नहीं मेत संगे दुखी को डान लग संगे दुखी को सब त्याग संगा दुखी माँ अहंकारी संगा दुखी सदा बिकारी संगा दुखी जन्मा मर संत की दुख ना सुख ते ठर संत के दुखी को नाई ठाह नानक संत भावित लय मिलाए संगा दुखी अज बीते टूटा है संगा दुखी किते काज ना पहु चाय संगे दुखी को ध्यान भरमाइए संगा दुखी उजड़ पाइए संगा दुखी अंदर दे थोता जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किशना है अबन भी जा पे ही खाहे संगे दुखी को अवरना रखन हार नानक संभावित लय उबार संगा दुखी एऊ बिरलाए जल बिहून मछली तड़ फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक इंद्र ने धरावे संगा दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुवेला संगा दुखी धर्म तेरे संगा दुखी सद मिथ्या कैत करत नंदका तुरही पया नानक जोत भावे सोई थिया संगा दुखी बिगडूबे जाए संगे दुखी को दरगाह मिले सजाए संगा दुखी सदा सह काइय संगा दुखी ना मरे ना जीवाइय संगे दुखी की पूजना आशा संगा दुखी उठ चले निराशा संगा दुख ना दृष्टा कोय जैसा भावे तैसा कोई होए पया करत ना मेटा कोय नानक जाने सच्चा सोए सब गढ़ तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात से ध्यावो सास गिरास सब कुछ वरद तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेल आप करने हार दूसर कहो न कहे विचार जिसनू कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन से सलूक

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पापसा मीत बिसारो चरण कमल हृदय में और तारो करण कारण प्राप करण कारण सो प्राप समरात दृढ़ कर गह हो नाम अरवाते तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्वरोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वे सो तन हर सेवा ते पामे जिस को बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करणी सा शोभा बजर की सरणियन को बावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान मेरा नाम निधान जब नानक दुर्गे प्रवान मन प्रबुद्ध हर के नाय दैत स्थावत आ बैठाए तागो बिघन न लागे गोहे जागे हृदय बसे।

पाष्टपति जब कारे काशना दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारिया पन सुन्न समाता बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप तब हर सो कहो तब हर सो कहो किसे व्यापत जब आपने आप आपार ब्रह्मता मोह कांग सोवत परम आपन खेला वर्तीजा नान कर निहार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनि तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्ग सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तराय तब कमन ने डर कमन कत डराय आपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपने आसंता उज तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ये चर्जा नानक अपन रूप आप ये प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पा तोता तय बिर मैल कह हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्माण तय गौन को मान गौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल शत्र लगत कहो गीस जय जो सुरपी जो संग समावे तय किसे भूक मंत्र बतावे करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माये बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलापे परवीन तय वेद देव कह गौ जीन जब अपने आप आप रुतार है तो सगन

आपे धनी उनकी शोभा अनुह बनी, आपे कौतक करे अनद चोज, आपे रस भोगन निरजोग, जिस भावित आपन नाहे लाभ है, जिस भावित खेल खिलाव है, बेसुमार अथाह अगंत अतुल ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बुलै। सलो जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार, जात सभावे ता सृठ उपाए, अपने भाणे लय समाए, तुम ते भिन नहीं किश होए, आपन सु सब जगत परोए, जागो प्रभ जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल शिष्ट का जेता, जी जंत्र सभता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोय ना मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जिगी जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानू साथ।

नानकमन प्रकाशष्टपदी संत संग अंतर प्रभु ढीठा नाम प्रभु का लगा मीठा सगल समग्री एक घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नाउन अमृत प्रभु का नाम देही मैं सगा विश्राम सुन सम

अष्टपदे पूरे गुरु का सुनुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतराय चिंद आस अनित्या गोतरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती कर हो सा संग अगन सागर तरह हर तन के पर लिहो पंडार नानगर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पाज परम

न जानिए। समुंद साह सुल्तान गृहा से तीमाल तहन कीड़ी तोलना होवनी जे तुस्मन होना विसर है।

सर्वत्र साजह कै सर्वत्र दीनह कै सर्वत्र लीनह कै सर्वत्र जाहो कै सर्वत्र पाहो कै सर्वत्र देसह।

सूत है के नरकं प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है।

कारण है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्वे उबारण है, तृत के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कालखंडस है।

प्रियांग प्रिया शांत नमः तल प्रणामे सुबाह तल प्रणा से गंजल नमः तल प्रणामे सुबाह तल प्रणा से गंजल नामे सुबाह तल निवासे निरकामं विभूते सुबाह तल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभू

है। एहो सोहिला सबदो सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया, जिन तुरह लिखियाया। एक फिरे कनेरे करहे गला, गली किने न पाया, कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सुभा।

पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समाधन मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लिलाटंग धोती वस्त्र कपाटंग

पुछै के कीटा इंद्र कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हकोए ना सुजई जे तस गुण कोए करे सुनया सिद्ध फिर

मन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोए। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सकल पवन की सुध।

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मंजन मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंच पावन दर गयमान पंच सो

असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंग दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोह लिवलाय तार कुदरत।

आप विदापै का नानक हुकमे आवदाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन किता पाओ।

सत सो हंस दामन चाओ कवन सो वेला भगत कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति मा कवन जित आकार वेल ना पाया पंडती जय होवे लेख पुराण वखत ना पायो कादिया दे लिखन ले कुरान थितवा ना जोगी जाने रुतमाव न कोई जा करता सुटी को साजे आप जाने सोई किव कर आखा किव सा लाहे क्यो वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दो एक सियाणा

विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई है पी हो सीधा न दासी रचना जिन रचाई रंगी।

करणाजाय सोपात्साह साह पत्साह नान करण रजाई मुंदा संतोष शरम पचोली त्यान की कृपूत खिंता काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत आई पंथे सगल जमाते मन जीत जाग जीत आदेश से आदेश आद नीला नाद नाहत जुग जुग एक वेश भगत ज्ञान दया भंडारण कर कड़वा जय नाद

ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, देखो क्या पिछे बचता है, तिथे कड़िया सुरत मात मन बुद्ध, तिथे कड़िया सुरा

गावन्तु धनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहंते रे सदा सवारे गावन्तु धनो इंदर इंदर आसन बैठे देवतियां दरनाले गावन्तु धनो सद समाधि अंदर गावन्तु धनो साज विचारे गावन्तु धनो जति

कर कर रखे तेरे तारे से तुनगामन जो तु पावन रचे तेरे भगत रसाले होर केत तुनगावन से मैं चितनाया बन नानक्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सच नाई है पी हो सी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाते कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखा कि

निर्मल संगत गुण परगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पागिन जम पास जो सतगुरु सरण संगत नहीं आए त्रिक जीव त्रिक जीवास जन हर जन सतगुरु संगत पाए तन तुरम सुख लिखिया लेखास तन तन सतसंग जित।

साथ जेकर क्रिया खट कर्म करंता उसे भगत पले जन नानिधि जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी तू जेवड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुझे आपे पावे सोई वरता जी तू आपे कर सो होई तुझे आपे सिर सब पाई जी तुझे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचिया।

कर किरतया के करते का हुए विचारो तदकर गावो सोहेला शिवरो सृजनहार तुम गावो मेरे निरपो का सोहेला हूँ वर्ज सोहला सदा सुख हो राहो नित न जड़ संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने क्यों तना पवे थे दाते कमण सुमारे संभल सा लिखे आमिल कृपा बो दिल देव सजने सिड़िया।

आए फुलंत ज्योति कैसे आरती होए पवकरणा तेरी आरती अनहता शब्द वायंत पेरी राहाओ सह तव नन्ना नैना तो को सह स्मृत नन्ना एक तो ही सह पद ब्रह्म नन्ना एक पद गंध बिन सह

हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो अनदनो मोह आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारं कोहे दाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वे महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखित लिखे गुरु पाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि।

एहो संसार विकार संसार में तर ब्रह्म ज्ञानी जस जगाए प्याव रस अखत कथा तन जानी जाको आए सोई बेहद हो हर गुरते मने बसेरा निज कर्म अल पाव सुसहजे बो न हो गो फेरा अंतर

मत देख भोला विसरय चरजत न आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै पाओ मत देख भुला विसरय तेरा जितना आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करे बैठा नानका सब वाओ।

आयु शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो बेनती है बच्ची दे पिता जी सरदार गुरदीपक सिंह कुलार जी काका जी दा पल्ला बच्ची नूं पकड़ाउण दी कृपालता करन। रागी सिंह पल्ले दा शब्द गायन करनगे, उस तो उपरंत लावां दा पाठ होएगा जी।

श्री वाहिगुरु जी हर चौथड़ी लाओ मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलया सुपाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरी प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वाधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम बिगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी जन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें त्याय। फिर अंग

से हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई आय। जिस दिठे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया। कर नाउन दयावे ताय, सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई हुए सहाय।

हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दी राखी कर अपने सदा सदा रंग माण साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्ब कल्याण रहाऊ जियो पाए पिंड जन साजिया दिता पैनन खाण

एक गुड़ लागे गुड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डुबे सगले कोल डुबे, कूड़ बोल बिख खावणिया। इस तान मह मन को गुरमुख देखै, पाए भगत जाहो मैं सोखै, सिद्ध साधक मोन तारी रहे लिवलाए, तिन पी तान मह मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवै, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा। इस गुफा में खोट भंडारा, तिस बिज वस हर अलख अपार, आपे गुबत प्रगट है आपे, गुर सबदी आप मजावणिया।

चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बशो साजन पुरख विसार कै लगी माया तो पुत्र कलतरना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह एक सर के नाम बिन अगे लइए खो हे दयो विसार वे गुचना प्राबिन अवर न कोए प्रीतम चरनी जो लगे तिन की निर्मल सोए नानकी प्रबिनती प्रमिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगै जां संद पेटै हर सोए हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन।

जो प्रभ कीते आपने से कहिए धन आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप दे नानक रंग मानन हर जेठ रंगीला ते धनी जिसके भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाउ न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुए पाए वे गुची है गल पई सजम की फास जिहा बीजै सोलुने मथे जो लख्यास रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कहो साधु भेटीऐ सो दरगै होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामनी चरण कमल सिउ प्यार मन ता रता सच रंग इको नाम धार बिखिया रंग कुड़ावया दिसन शबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वान त्रेन प्रभ संग मौलिया समृत पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार

अगन पानी बोले बड़ चढ़ बोले पढ़वाओ जिहवा इंद्री एक सुहाओ दिष्ट बेकारी नाही भो पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरै फिर मरण न होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए थिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार ठाके बहुत दर्ग है मार सच सलाही धन गुरुद्वार नानक दार घर एक अंकार गौड़ी महला पहला उल्टियो कमल ब्रह्म विचार अमृत धार गगन दस द्वार त्रिपुण विद्या मुरार रे मन मेरे भरम ना कीजै मन माने अमृत रस पीजै रहाओ जन्म जीत मरण मन मानिया मुआ मन मन ते जानिया नजर भई घर घर ते जानिया जात सत तीर्थ मज्जन नाम आदिक बिथार करो किस काम नर नारायण अंतर जाम आन मनो तो हक पार कर जाओ किस जाचो नाही को थाओ नान गुरमत सहज सुमाओ गौड़ी महला पहला सतगुरु मिले सो मरण दिखाए मरण रहन रस अंतर पाए गर्भ निवार गगन पुर पाए मरण दिखाए आए नहीं मेरे रहना हार जाप जाप रहन हर सरना रहाओ सतगुरु मिले तुबता भागै कमल विकास मान हर पब लागै जीवत मरे महारस आगै सतगुरु मिले सच संजम सूचा गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा कर मिले पर जम का पौ समूचा गुरु मिले मालयंक मेले अंक समाया कर कृपा कर महल दिखाया नानक होमे मार मिलाया गौड़ी महला पहला किरत पया न मिटै कोय क्या जाना क्या आगे होए जो तिस भाणा सोई हु

सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंद हर कथा मंगे हर चंगी जियो हर आपे भगत कराए दा मेरे गोविंद हर भगता लोच मन पूरी जियो हम आपे जल तलवरत दा मेरे गोविंदा हर रव रहया नहीं दूरी जियो हर अंतर बारे आपे मेरे गोविंदा आप रहया पर पूरी जियो हर आत्म राम पसार है मेरे गोविंदा हर वेख आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा आप बजाए त्यों वाजा जियो हर अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा गुरसबदी हर प्रभगाजा जियो हर शरण पवाए दा मेरे गोविंद आपे शरण पवाए दा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजा जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिदका जा जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नाम में हर बिरो लगाई जियो मेरा हर प्रभ जित मिलै सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सकार पाई जियो गुर गावो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ घेरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण मेरे मेरे हर मेरे जियो फिर बहुत न भव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभ मेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा भाओ जियो गुरसबदी पाई है हर प्रीत मराओ जियो वडभागी जप नाओ जियो मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ आसा जियो सतगुर साधुगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो मान हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा पीरता मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सज्जन हर सुगण सुजान जियो हर नाम मिटो गुरबाण जियो हर हाँ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संत हो जी हर खोज खवा पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरो लगाई जियो गुरसदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदे को अंकार सतगुर प्रसाद कैन बिद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाई है हर नाम सहाय रहाओ कुशल ना गृह मेरी सब माया उच्चे मंदर सुंदर छाया झूठे लाल जन्म गवाया हासी कोड़े देख बिगासा लश्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी होमै की फासा राज कमावे दह दिस सारी माणे रंग भोग बहु नारी जो नरपत सुपने पे खारी कुशल मोको सतगुरु बताया हार जो किछ करे सो हर क्या सन भगतां पाया जन नानक होमै मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई ओ पाई है हर नाम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी री महला पंजवा क्यों भ्रमी है भ्रम किसका होई जा जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उपरे मानमुख पातक होई जिस राखे आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को बहुचनहारा रहाओ सब मैं वरते एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओह सब किछ जाने जो वर्तनता मनमुख मुए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवे तुरत किरत लिखियासा जैसा बीजे तैसा खासा देख बदरस मन भया विक बेगासा सब नदरी आया ब्रह्म प्रगासा जन नानक की हर पूर्ण न्यासा गौड़ी ग्वारी री महला पंजवा कई जन्म भय कीट पतंगा कई जन्म का जमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सरप होयो कई जन्म पहावर बिरख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चरंग काले दे संजरिया रहाओ कई जन्म मैल गिरफ करिया कई जन्म गर्भ हिर करिया कई जन्म साख करु पाया लख चौरासी जौन ब्रह्माया साध संग भयो जन्म प्राप्त कर सेवा भज हर हर गुरमत

तिस जन दुख निकट नहीं आवै। हर की टहल करत जन सोहै, ताको माया अगन न पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजिए ले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवा। छाड़ सियानप बहु चतराई, गुर पूरे की टेक टिकाई। दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुर पूरा पेटिया लिव लाए। रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे विसुरे उतरी चिंत। आनंद पए गुर मिलत किरपाल, कर किरपा काटे जम जाल। कहो नानक गुरपूरा पाया, तां ते बाहर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा। राख लिया गुरपूरे आप, मनमुख को लागो संताप। गुरु गुरु जब मीत हमारे, मुख उज्जल होवै दरबारे। रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए, दुख दुश्मन तेरी हत्ते बलाए। गुर का शब्द तेरे संग सहाई, दयाल पै सगले जी पाई। गुर पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा। अनक रसा खाए जैसे ढोर, मोह की जेवरी बांधियो चोर। मृतक दे साध संग बेहुना, आवत जात जोनी दुख की ना रहाओ। आनक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यों डरना खेत माही डराया।

ना ठाहो जन कम सिंह लागी प्रीत आ सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरु प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पह रंगी बटवारे कर कृपा प्रभ लै निवारे ऐसा हरस रमो सब कोई सर्व कला पूर्ण सब सोए रहो जहां तप सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाए सिमरत नाम मुक्त फल पाए ओक सियाणप ते कुछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाए गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूर्ण सब काम बड़पागी हर कीर्तन गाइये पार ब्राह्म तू ते सो पाइये रहो हर कै चरण हृदय और तहार पव सागर चढ़ उतर सपार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख न होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाइये मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूर्ण हार मीत भरम बिंस गै गुण नीत उठत सोबत हर संग पहरुआ जाके सिमरन जम नहीं डरुआ जाके सिमरन जाम नहीं डरुआ राव चरण कमल सबर दे निवास सगल दुखा हुआ नास आसा मान तान तनेक साचे साह की मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ कौड़ी महला पंजवा हरा नाम मंजन कर सुचे कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहो हर कह चरण हृदय में वसे जन्म जन्म जन्म के किल विख सब नसे सा संकीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मान बच कर्म गोविंद आधार ताते छूटे बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा तो सरनाई जिन हर जाते मतन सीत चरण हर राते पै भंजन प्रभ मन मह बसाई डरपत जन्म बहु जाई रहो जा कह हृदय बसे हर नाम सगल मनोरथ ता कह पूरन काम जन्म जरा मृत जस वास सो सम्राथ सिमर सास करास मी साजन सखा प्रवेक नाम स्वामी की नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बाहर राखे और देश माल कराए गोविंद लै नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम के रंग रहो गुरप्रसादी सागर तरिया जन्म जनु के किल विख सब हरिया सोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय मह जाप नानक बेखे नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन सो थान गोबिंद गुण गाए कुशल खे प्रभ आप साए रहो बिपत जहां तहां हर सिमरन नाही कोट नंद जय हर गुण गाई हर बिसरै दुख रोक नेरे गोर सेवा जाम लगे न नेरे सोबट भागी ने चल थान जय जपिए प्रभ केवल नाम जय जाइए तै नाल मेरा स्वामी नानक कहो मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोबिंद त्यावै पढ़िया न पढ़िया परम गत पावै साध संग सिमर गोपाल बिना मैं झूठा तन माल रहाओ रूपवंत सोचत सियाना जन जन मान्या प्रभु का भाणा जग मैं आया सो परवान कटकट अपना स्वामी जान कहो नानक जाके पूरन भाग हर चरणी ता का मन ला गौड़ी महला पंजवा हर के दास हूं साकत ने संग ओ विखाई उस राम को रंग रहाऊं मान

0: सूचा
1: सिमरन कृष्ण भुज
0: आपके सिमरन सबके सूज
1: आपके सिमरन नाही जम त्रासा
0: आपके सिमरन पूरन आसा
1: आपके सिमरन मन की मल जाए
0: अमृत नामृत माए समाए
1: कब जी बसे साध की रसना
0: नानक जन का दास दसना
1: सबको सिमरे से तनवंते
0: सबको सिमरे से पतवंते।

0: परखै
1: भक्त जना की वर्तन नाम
0: संत जना के मन बिसराम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत स

0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।